गलती हो जाए तो उसे माफ करने जरूर कीजिएगा। कभी कोई अपने रूठ भी जाए आपसे तो पहल आप जरूर करिएगा मनाने की, झिझकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि रिश्तों में कौन सही था और कौन गलत इससे ज्यादा अहम है कि रिश्ता हमारे लिए कितना कीमती बना रहे। हर मुश्किल वक्त में आप उनके लिए खड़े हों, वो आपके लिए खड़े हों, और इसी उम्मीद के साथ आज के इस सफर में आगे बढ़ते हैं और एक बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आज अपने किसी खास इंसान को बस इतना कह दीजिए कि तुम मेरी जिंदगी में हो, इसके लिए बेहद शुक्रिया। यकीन मानिए ये छोटे से अल्फाज किसी के दिल में बड़ी सी खुशी भर सकते हैं। और अब इसी खूबसूरत एहसास को आवाज दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह, फिल्म कुंवारी बहू के इस बेहद खूबसूरत के साथ।